है, बाकी तो सब शैतान का धोखा है। असल में सोचे, मिसाल के तौर पर सोचता है भाई मुझे ताकत चाहिए, तो एक सवाल है कमज़ोरों में ताकत चाहिए या ताकतवरों में ताकत चाहिए? कमज़ोरों में ताकत लाओगे तो क्या फ़ायदा, एक ताकतवर तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें कुचल देगा, तो जाओ ताकतवरों में ताकत लेकर आओ। अच्छा, जब ताकतवरों में ताकत लाओगे तो एक ताकत ऐसी है जिसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, अजीज़ है। खुदा अंदर मताल फरमाते अज़ीज़ मैं हूँ, तुम ताकत कहाँ ढूंढ रहे हो? अज़ीज़ खुदा है। अज़ीज़ का मतलब क्या है? नफूज़ ना पज़ीर, कोई इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। खुदा फरमाते अज़ीज़ तो मैं हूँ, तो तुम्हें ताकत कहाँ मिलेगी? तो थोड़ा सा हम अकल से काम लें, अपनी उस फितरत को सही डायरेक्शन में लेके जाएं। अभी जो सही डायरेक्शन में लेके जाना, इसको हम कहते हैं हिदायत। तो एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है कि भाई ये हिदायत कैसे हासिल होती। कल हमने शायद काजी शुरैह के नाम जो ख़त लिखा गया था उसके ऊपर इख्तिताम किया था, तो उससे थोड़ा सा वसल करने के लिए, मुत्तसिल करने के लिए जो कल बात हुई थी वो ख़त्म हुई थी इस पर कि अकल कहाँ तायद करती है, थोड़ा सा उसके नज़दीक लाने के लिए हिदायत के चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करते हैं। ज़ारे बहुत अहम चैप्टर हो गया हिदायत का चैप्टर, इसको किस अंदाज़ में देखना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह इस ख़त से दोबारा शुरू करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। खुदा तआला ने हमारी अक्लों को ऐसे खल्क किया है कि हम उसके लिए सबब ढूंढते हैं, हर चीज़ के लिए सबब ढूंढते हैं, बिला सबब कबूल नहीं करते। मसलन आप घर में बैठे हों और मसलन अकेले बैठे हों कमरे के अंदर, अचानक जहाँ पे आप बैठे हों उसके नीचे से आपको एक आवाज़ आए, अच्छा अब आपका दिमाग क्या करेगा? क्या ये सोचेगा कि ये आवाज़ बिला सबब आई है, या ये सोचेगा कि नहीं अगर आवाज़ आई है तो कोई वजह तो होगी कि आवाज़ आई है? अच्छा, पहले झटके में आपका दिमाग सबब ढूंढेगा क्यों आवाज़ आई है। अच्छा, उसके बाद अगर सबब मिल गया तो आपका दिमाग मुतमईन हो जाएगा कि चलो ठीक है समझ में आ गई बात। अच्छा, अगर नहीं मिला तो क्या होगा? आप तसव्वुर कीजिए, आप अकेले बैठे हुए हैं, नीचे से एक आवाज़ आई है, आपके दिमाग ने पहले झटके में क्या करना है ये सोचना है क्यों आई है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें आपको रीज़न पता है कि भाई इसके नीचे ये हो रहा है इससे ये आवाज़ आई है। अब यूं फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नहीं पता, अब आवाज़ आ रही है, अब क्या होगा? अब फौरन दो चीज़ें हासिल होंगी, एक तजस्सुस एक खौफ। एक तो ये कि क्यों आ रही है, दूसरी बात ये कि ये क्या है जिसकी वजह से आ रही है, खौफ कि भाई ऐसा ना हो कोई नुकसान होने वाला हो, भाई पहले से देख लूँ मैं क्या हो रहा है ये क्यों आवाज़ आ रही जा रही है, सबब भी समझ में नहीं आ रहा है, खौफ आता है इंसान को। हम इंसानों को खुदा ने इस तरह अक्ल पे खल्क किया है, हमें सबब चाहिए हर चीज़ का। अपने आप से एक बात पूछते हैं, बारिश होती है सबब चाहिए, तबीयत ख़राब हो सबब चाहिए। अलबत्ता ये हमारी गलती है कि जब तबीयत सही होती है तो हम सबब नहीं ढूंढते, जब तबीयत सही है तो उसका भी सबब रहमत खुदा है, उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? बीमार होते हैं तो सबब ढूंढते हैं कि अब शिफा आए। अक्लमंद बीमार होने से पहले सेहत के ऊपर शुक्र कर लेते तो शायद ये मुश्किल ना आती, पहले उसको ढूंढो। मसलन हादसा नहीं हुआ, इस पे शुक्र नहीं करना है, हादसा बहुत नज़दीक आया और नहीं हुआ, अब शुक्र करूंगा कि नज़दीक आया और नहीं हुआ। उस खुदा का शुक्र क्यों नहीं कर रहे जिसने नज़दीक भी नहीं आने दिया था? हम लोग इस गफलत में कि नाऊज़ बिल्ला, अब हम लोगों की गफलत यहाँ पर है, नाऊज़ बिल्ला हम ये समझ रहे हैं रूटीन कहीं और से है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुदा की तरफ से है। हम यूं समझ रहे हैं बीमारी खराबी है और जो नॉर्मल सेहत चल रही है ये समझ रहे हैं ये पता नहीं किसकी तरफ से, सब खुदा की तरफ से है, सब खुदा का काम। तो अगर मिसाल के तौर पर अभी मैं बीमार नहीं हूं तो शाकिर नहीं होना चाहिए मुझे, ये बीमार ना होना भी सबब डिमांड कर रहा है, वो सबब खुदा की रहमत है कि मैं बीमार नहीं हुआ हूं, ये कि मैं जिंदा हूं

उनके मुंह पे वापस मार दी जाती हैं, रिवायत है हमारे पास। इमाम ने फरमाया कि ये जो तुमने किया, तुमने क्या किया, तुम्हारे पास एक इज्जत थी, तुमने वो इज्जत दे दी और तुमने उठा के जिल्लत ले ली। अच्छा, वो इज्जत कौन सी थी जो शुरह ने दे दी? इमाम उसको इज्जत कह रहे हैं। क्या दिया तुमने? इमाम फरमा रहे हैं तुम्हारे पास कनाअत की इज्जत थी।

करना है, लेकिन इमाम ने एम्फसाइज किया, याद दिलाया, वसीयत करना हमारा काम है, लेकिन तुम अगर एश्योरेंस दोगे, अगर वायदा करोगे तो उस पर अमल करोगे तो वसीयत बयान होगी। इसी तरह से बीवी ने भी फरमाया था, जब किसी खातून ने आपसे पूछा मुझे वसीयत करें, वो कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे मेरी ज़िंदगी कामयाब हो सके, तो बीवी ने पूछा था तामल, क्या उस पर अमल करोगे? अगर अमल न करने का पहले से इरादा हो तो फिर वसीयतों का कोई फ़ायदा नहीं है। वसीयत अमल के लिए, वसीयत प्रैक्टिस के लिए और वसीयत एक्शन के लिए होती है। इमाम ने फौरन पूछा व तकबल, क्या अमल करोगे? काला नाम, मौला हाँ, मैं आपकी वसीयत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। काला, इमाम ने पांच नसीहतें फरमाईं, जो खूबसूरत वसीयतें इमाम की हैं, नसीहतें इमाम की हैं, लाइफ चेंजिंग हैं, खुसूसी तौर पर इस ज़माने में जहाँ पर मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, गम हैं, तो इमाम ने उन वसीयतों के साथ फरमाया, हमारे लिए कारसाज वसीयतें हैं इमाम की। इमाम फरमाते हैं पहली वसीयत, तवस्सद सब्र, देखो सब्र को अपने लिए तकिया गाह करार दो, सब्र से टेक लगाओ, इसलिए कि इंसान जो तकिया, जो पिल्लो अपने पीछे रखता है, जो दीवार का टेक लगा कर बैठता है सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए, जो लोग दीवार को टेक लगाए बैठे हैं वो शायद इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि वो जब टेक लगा लेते हैं तो थोड़ा कमर को इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। इमाम फरमाते हैं ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, थोड़ा टेक लगाओ। किस चीज़ से टेक लगाए? आदमी सहारा ढूंढता है, आदमी सोर्स ढूंढता है, आदमी किसी की मदद ढूंढता है। इमाम फरमाते हैं बेहतरीन मददगार, बेहतरीन सहारा, बेहतरीन तकियागाह, बेहतरीन पिल्लो जिससे तुम टेक लगा सकते हो वो सब्र है। अपनी ज़िंदगी में पेशेंस को आने दो, हासिल करो। जब साबिर बन जाओगे, सब्र को टेक लगाओगे, तो तुम्हारे दिल को, तुम्हारे नफ्स को इत्मीनान मिलेगा, सुकून मिलेगा। सब्र से बेहतर कोई सहारा नहीं इंसान के लिए इस दुनिया में। इमाम ने फरमाया तवस्सद सब्र, सब्र को अपना तकियागाह बनाओ। और नहजुल बलागा में मौला कनात फरमाते, ईमान को अगर दो हिस्सों में तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा उसका सब्र है और दूसरा हिस्सा शुक्र है। ईमान का एक हिस्सा सब्र है और दूसरा हिस्सा शुक्र है। अगर सब्र ना हो तो गोया ऐसा है कि इंसान के बदन पर सर नहीं है। अगर सब्र है तो ईमान का सर बाकी है, और जिसकी ज़िंदगी में सब्र और शुक्र दोनों शामिल हो जाते हैं उसका ईमान कंप्लीट और मुकम्मल हो जाता है। मौला ने फरमाया ईमान के दो हिस्से, पैगंबर इस्लाम इस हदीस में फरमाते हैं अस्सब्रो रासुल ईमान, असल जो सरमाया, कैपिटल ऑफ द ईमान एंड द फेथ, वो पेशेंस और सब्र। अगर सब्र नहीं है तो इंसान का ईमान हाथ से चला जाता है। तो मुश्किलात में, परेशानियों में सब्र को तकियागाह बनाओ, नंबर वन। नंबर टू, वह अतनिकिल फ़क्र, फ़क्र को गले लगाओ, एम्ब्रेस द पावर्टी, एम्ब्रेस द नीडी, नीडीनेस। तो ये इमाम ने इसलिए जुमला इरशाद फरमाया, बाज़ लोगों ने इसका ट्रांसलेट किया फ़क्र यानी पावर्टी, फ़क्र यानी नेसेसिटी, फ़क्र यानी जो इंसान के पास कमी रह गई है उसको गले लगाओ। कमी से हम दूर नहीं भाग सकते, इंसान कोशिश करता है, तलाश करता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। कौन है इस दुनिया में जो ये कह सके कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐब नहीं है? अगरचे इंसान अच्छी चीज़ों को ढूंढता है, परेशानियों को उसे इग्नोर करना है, तबीयत नेचर ने हमें लेसन दिया है। एक गुलाब के दरख्त में गुलाब एक होता है लेकिन कांटे हज़ारों होते हैं, लेकिन उस दरख्त को कांटों का दरख्त नहीं कहा जाता, गुलाब का दरख्त कहा जाता है। चीज़ें अच्छी देखो, अच्छी सेलेक्ट करो, गुलाब ही कहेंगे, कांटों का तस्करा नहीं होता है। इंसान की ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, कमियाँ हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन इमाम फरमाते उससे भाग नहीं सकता बंदा, उसको गले लगाओ तो परेशानी घट जाती है, परेशानियाँ वीक हो जाती हैं, परेशानियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं, उन्हें गले लगाना पड़ता है। बाज़ लोग कहते नहीं, बाज़ कमेंटेटर, फ़क्र, फ़क्र सिर्फ माल का नहीं है, फ़क्र यानी स्पिरिचुअल फ़क्र है। इंसान के अंदर एक जो रूहानी तौर पर कमी पाई जाती है उसके लिए इंसान को
اپنے گلے لگانا ہے، اسے دور کرنا ہے اس فقر کو. ہم سب فقیر ہیں، کوئی دنیا میں غنی نہیں ہے، کوئی دنیا میں امیر نہیں ہے، کوئی دنیا میں خدا کے سامنے سب کے سب

ताला हमसे भी सवाल कर रहा है, तुम्हें भी निकलना है, बस ये बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। अइना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है। कहीं ऐसा ना हो नीयत अलग हो और तुम्हारा सफ़र कोई अलग डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो, तुम्हारा मकसद अलग हो, तुम अलग रास्ते पर खड़े हुए हो। आइना तज़हबून का माना निकलने से पहले सोच लो जो जिस डायरेक्शन की तरफ तुम जा रहे हो वो अल्लाह की तरफ पहुँचने वाला है या शैतान की तरफ पहुँचने वाला है। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, माफ़ी चाहता हूँ ज़्यादा नसीहतें ना हो जाएं, कदम सूय मरकद नज़र सूय दुनिया। मेरा बदन कह रहा है मरने के लिए तैयार हो जाओ, ढल रहा है दिन ब दिन बदन ढलता है, लेकिन नज़र दुनिया की तरफ है, कितना बचाऊं, किसका लूटूं, किसका खाऊं, कहाँ जाऊँ, कितनी जेब भरूँ। कदम सूय मरकद नदर सूय दुनिया, कहाँ जा रहा है, किधर देखता है। तुम जा कहाँ रहे हो, देख कहाँ रहे हो। अगर इंसान ये सोच ले कि ये मुझे कहाँ जाना है और मेरी डायरेक्शन क्या है, इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। अपने लिए इंडिविजुअल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, ये भी तसव्वुर करें आज की दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। खुदा की तरफ जा रही है या शैतान की तरफ, जस्टिस की तरफ जा रही है या जुल्म की तरफ, गुड की तरफ जा रही है या एविल की तरफ, जी ट्रुथ की ट्रुथफुलनेस की तरफ जा रही है या झूठ की तरफ। इंसान तसव्वुर करे या अंदाज़ा लगा, एनालाइज करे दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। बचा कर लोग खुश कम हो रहे हैं, मार कर लोग तालियाँ बजा रहे हैं। देखिए ये इंसानियत की तरफ जा रही है, किस डायरेक्शन की तरफ जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये इस बात की तरफ इशारा किया, आखिरी जो हुकूमत होगी वो अदल वाली हुकूमत होगी। और अहादीस में भी बताया डायरेक्शन तुम्हारा अदल की तरफ होना चाहिए, इस रास्ते पर चलते चले जाओ, तुम्हारी मुलाकात इमाम दमाना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ से होगी। اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبيا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيداي شباب أهل الجنة والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله اللهم اجعلنا ممن يذكره فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته